0: वैसे आपको समझ आती है इसकी, किस किस को समझ आ रही है? फुल्ला गुलाब दिया
1: सकूले को लचिए
0: बोली जबरदस्त है, इनको जबरदस्त मानने का ना, जितने भी इनको वाले एंजॉय कीजिएगा, मुझे समझाए भी ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कह रहे, थोड़े से सुनते हैं फिर उसके बाद आपके मैसेजेस आपकी कॉल्स की तरफ आते हैं, सही है, एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को।

थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं यार, गुजरी जुबान नहीं है, इसके कुछ करते करते यार इसके कुछ गुजरी जुबान की तरफ जाते हैं। ये क्या कहते हैं वैसे, चले वाकई गुजरी जुबान है, जरा सुनिए फिर मुझे बताइएगा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: हाजी ग्रान उर्दून कुता सोरे रेडियो अमन एफ एम टी शरीर चार बटा ग्राम पर फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीम पतावन सरा तस्वीर यो लसन तो दुलस बाजू पूरी और फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीम ब्यूटी क्रीम एक्नी क्रीम स्ट्रॉबेरी फेस वॉश एक्नी फेस वॉश शैम्पू तेल लिवे खतू दी पारा दाहर से बताओ तो मिला भी दी मोहसिन शाहपुर दुकान की प्रोग्राम तस दियो लसन दुलस बाजू पूरी और माजिरत कुता सुना चीट कमो कसान मुंग तक कालू ना उकरल खबरी उकरी यहू डेरे शुक्रिया औ कमो कसानो ची कालू को मंगे दियो काल वानो रेद उचतनक सिरी मजबूरे दिवजिना जे टाइम दिवजिना नु अगुता माजिरत को कमो कसानो चि बिल्कुल कालो नक प्रोग्राम सिर्फ वावरे द नदी अगु डेर डेर शुक्रिया डेर डेर मेहरबानी चि तजुम का प्रोग्राम और ए खवाई
1: शुक्रिया आपने रेडियो अमन एफएम 88.4 बटग्राम ट्यून किया
2: रेडियो अमन नेटवर्क
3: पैगाम अमन है
4: प्यार की एक दुनिया लेकर
5: मोहब्बत समेट कर
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
7: रेडियो अमन नेटवर्क।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर।
6: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर मार कलूना तालीम पर मैदान की फुल खिदमत तबसर कभी नकाम बची फुल बची गणी दौरे हाजिर तालीम वरकवल सरासरा और माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के लतीर उद्रव कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहमद इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खसूसियात द दौरे जदीद तालीम वरकवल माशुमानों के इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वरकवन के इदारा द स्कूल खपल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो खपल मैदान खुमश्ता न द खपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात पर महदूद सीटों बांधे दाखिली शुरू दी न पता याद साथ अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वाबडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमात दपारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दी 0345-94-72-137।